जप जान बिना संयोग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दया धर्म बिना क्या कर्म नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं।